खाकर, अरे तेरी भूला आकर जाकर पीकर लेकर, आकर जाकर पीकर लेकर, आकर जाकर पीकर लेकर, पीकर लेकर, पीकर लेकर, पीकर लेकर, आकर जाकर, आकर जाकर है।